0: तने
1: बंद मुकत को किसको गने
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए
1: तब सकत को किठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तर
1: कवन निडर कवन कट डर
0: आपन चरत अब आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अब नासी सुख आपन आसन
1: जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: जम की त्रातों की सोए
0: जब अभिगत अगोचर प्रभ एका
1: चित्र गुपत के पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे
1: कौन छोटे

0: उतार
1: सगन अब सगन कहाँ बिचारे
0: जय आपर ऊंच आपन का अपनेरा
1: ठाकुर कहिए चेहरा
0: बिस्मन बिसम रहे बिस्मात
1: नानक अपनी जानो आप
0: जय अचल अछेद भेद समाया
1: किसे भी आपत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: गुण का नहीं प्रवेश
0: जय एक एक भगवंता
1: कौन चिंत के सलाह

0: परंपरापार
1: दुख सुख माने पमान
0: अनेक प्रकार के अवख्यान
1: आपन खेल आप कर देख
0: संकोचे तो नानक
1: जय अवगत भगत तय आप
0: जय पसरे पासार संत प्रताप
1: दुहु पाका आपे तनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौतक करे अनद चो।

0: नाथ
1: जिस राखै तिस कोए न मारे
0: सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस तज अवर कहाँ को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राए
1: जी की जुगत जाके।

0: नानक हर प्रभु आपे मिले
1: साध संग मिल करो आनंद
0: गुण गावो प्रभु परमानंद
1: राम नाम तत् करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उधार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: प्राण धरन कहे सुहाओ
1: आठ पर प्रभु पेखो नेरा
0: अज्ञान बिन से अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय

0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटे अहंकार,
0: इस जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कारज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट,
0: दर्शन पेकत उदरत श्रेष्ठ,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: तन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरक प्रदान,
1: जिस मन बसे सो हो

0: परे
1: संत संग अंतर प्रवडिठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समग्री एक अस्कट माहे
0: अनेक रंग नाना दृष्टाए
1: नवनिध अमृत प्रभु का नाम
0: देहि मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनत नाद
0: कह न जाय अचरज विस्माद
1: तिन देखिया जिस आप दिखाए
0: नानक तेजन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: कट कट व्याप्रया भगवंत
1: धर्ण माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
1: मंथन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी

0: दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ये आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: लाले रतन
0: सुनत कमावत होत उधार
1: आप तरह लोके निसतार
0: सफल जीवन सफलता

0: सब के उस्तत करो संत मेत
1: सावधाने कागर चीत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: महान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊंच पाए स्थान
1: बहुर न होवे आवन जान
0: हर तन काट चले जन सोए
1: नानक जिसे परा

आनंद, एक ओंकारी सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज से ती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया, शब्दो तगावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारणा, अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारणा, सब ना

उपाय पुनरात का काटा शीशा श्री अस्केत जगत के ईसा पोह पर दृष्ट गगन ते पई सब हिन्यान वधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले उबारे कबियो बाचो बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दैर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कब हो आप मुह बचाव हो सुखी बसाई मोरो परिवार सेवक सिख सबाई करतारा और अच्छा निज कर दई करे सब बैन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ो कोई अवरना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप खाद मुझे अबरे मरण काल का त्रास न मरे ऊ जोसदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो कर हो रच्छा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हमता तुम हो परी चातुर दास गंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहु मारा

सिहारा जान अपना मुझे नवाजो आप करो हमारे सब काजो तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मयान द्वार तो है अपना जानो करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा

तिन अंतर हूँ मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है, यमकाल सह है सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणी, दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा।

0: って。
1: 尻はサタナム。尻はヘグルジー。カンキエカダルストハロ。नानक उन संग मोहे उधारो दर्शन को लोचै सब कोई पूरै भाग प्राप्त होई सुख हुटल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो वैसे पथक सामली
2: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: गुरु अरसह गुर सह चटिया तुद दिखे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दै शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसाह सतनाम श्री वाहिगुरु जी बिलावल महला पंजवा तुम

एक दू जीबो लख हो है लख हुए लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तराह पत पड़िया चढ़िया हुए अकेसो सुन गल्ला आकाश कीटा आई रीसो नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोड़ चुपै ना जोर जोर न मंगण दे ना जोर जोर ना जीवन मरना है जोर जोर ना राज बाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टा संसार जिस हत जोर कर विखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तेती वार पावन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप।

मन मानी नमो रोग हरता नमो रोग रोगी नमस्तु स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग

कर्मं न कायी अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्राय प्रतिशा अदिशा अदृशा अकृष्टाय भगवती छंद त प्रसाद करते के अछज दिशा के अपज पेशा के अंगन कर्म के अपंज परम के अपज लोक के अदस लोक के अवधूत वर्ण के विभूत करणाय के राजक प्रभा के त्रम तुझा के शुभ वर्ण के सर्वापरण के जगतंग कृत्य के छतरंग छतनीय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुप के आद अदेव के आप चतरंग विहीन के एकाधीन के रोजी रजा करी मारे हक पाक ब्यावे के गैब लग्यावे के आप लगनाही के साहन साहे के कारण कुंड है के रोजी दे हंद है के राज करी मैं के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देशाई के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सुखाय के सर्वत्र पुखाय के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र दिशाय के सर्वत्र पिसाय के सर्वत्र माने सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पाण्य के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग अफीम के आकुल अलाम के साहब कलाम को सुनल वजू है तमाम रजु हमेश्वर सलाम सलीकदमदाम गरीब सकस्त है गरीब प्रस्ता है बुलंदल मकान है जमीन जमान है तम जल तमाम रुजल नदान है हरिफल जी मर जा के यकीन अनेक तरंग है भेद है।

प्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ताम् सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाताम् सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद तपसाद नमो नरक नासिस्दं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथी अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगे अनुपे न पुत्र

करणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववर्ण है, त्रित के तन है, जाके कर्ण है, मन माने है, जग जान है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करणा कर है, बेसों बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है,

करुणा कृत है, अकृत अकृत तरणी तृत है, अमतेश्वर है परमेश्वर है, अकृत अकृत अमृत अमृत है, अजबा कृत अमृत अमृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करुणाल है, नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयास श्याम दे, नमो सूरज सूर्य।

ताओं ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता केलबिक सकल देह को हरताओं दोष दुखियन को छ करता श्री अस्तो जो पाए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न सबे आपत कोई अड़ल सुना गोंग जो जाहे सो रसना पावई इसना मूल चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पाव निकट नंग तिन नरके रह हो जो जाकी एक बार चाऊ पाई को कह चाऊ पाई संबत सत्र सहसपण जाय अर्ध सहसपण तीन कही जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीरु तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया

वर्ण वजाया बजाया बाजा पावना नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इकना दसवा द्वार दिखाया।

है, रहस्य है, आनंद है। आनंद कर संत हर जप उन्हां दी संग जो हिरदे निष्काम है, दुनिया के लोभ लालच वाशना विच नहीं हन। संत शांत आत्मा है, निष्काम होके जपदे ने, इको प्रयोजन नाम जपना। स्वार्थ कोई नहीं है दुनिया का, उन्हां दी संगत विच लग के भाव सच्चा प्रेम पैदा हुंदा। तां ही क्या सा संगत बिना भाव नहीं उपज, भाव बिन भगत न होए तेरी, प्रेम तो बिना तेरी भगती नहीं हुंदी है। सच्चे पातशाह कह रविदास इक बेनती हरस, पैज रखो राजा राम मेरी, प्रेमा भगती दिओ सच्चे पातशाह। उन्हां दी संगत विच मिल के हरी वाहिगुरु का जप कर, नाम जप छेती कृपा हो जाती, छेती ला लग जाती है। पूर्ण महापुरख मिल जाए, साध कै संग ना ही कछ का हाल, दर्शन भेटत होत निहाल, पावन सुख मनी। ऐसा प्रभाव हुंदा है उन्हां दे जीवन का, इन्नी बरकत हुंदी है उन्हां दे शरीर विच, जुबान ते, नेत्रां च, धूड़ी च, हिरदा हर वेले प्रसन्न हुंदा है। साध कै संग ना ही कछ कहाल, मेहर दी निगाह पै जे, खुश हो जाण, बचन कर देन, धूड़ी मिल जे, मथे नू लग जे, निहाल हो जांदा है, पाप कटे जांदे ने। साध कै संग ना ही कछ कहाल, उथे नी कठन कमाई करनी पैंदी काल। दर्शन भेटत होत निहाल, दर्शन प्राप्त हुंदिया ही निहाल हो जांदा है, निहाल कर देंदे ने। वाहिगुरू चेते आउंदा सच्चे पातशाह, यह भी निशानी है पूर्ण साधुआं दी, कि जिन्हां नूं देख के, जिन्हां नूं तक के चेहरे नूं रब चेते आउंदा, अपने आप सिमरन हुंदा है, संगत विच बैठे सारे पाप कट्टे जांदे ने, मन दी मैल आदि शुद्ध हो जांदा, मन औगण छू मंत्र हो जांदे ने। दीदारे कीतिआं वाहिगुरू दी याद नाल जुड़िआ, दुनिया दे फुरने जिहड़े रुक जांदे ने, जिदे दीदारे कीते हैं, जी संगत विच बैठे हैं, वही साधु है समझ लो। ये भी निशानी दसी है सच्चे पातशाह जी ने। आवै साहिब चित तेरे भगतां डिठे हैं, मन की कटी है मैल साध संग वुठे हैं। मन दी मैल कटी है साध संगत विच वसन नाल, तेरे भगतां नूं वेखण नाल मालक चेते आ, तू आम चेते आना सच्चे पातशाह। ये फल आ, आवै साहिब चित तेरे भगतां डिठे, ये निशानी है, ऐसा प्रभाव है जी। यह निशानी साध की जित भेट तरी है, जिन्हां दे मिलाप नाल तर जाईदा, निहाल हो जाई। आनंद कर संत हर जप, तां कह रहे ने आप जीवन मुक्ति का आनंद माणदे ने। आनंद कर आनंद वाला जीवन बतीत कर, संत हर जप, शांत आत्मा साधुआं दी संगत विच मिल के जाप वाहिगुरू हरी नू, अकाल पुरख सिमरन कर, गुरमुखां दी संगत विच बैठ के नाम दा रंग चढ़ जांदा है, निश्चा अकाल पुरख ते टुट बज जांदा है। जगमा गोचर अदृश्य है, तर्कां कुतर्कां खत्म हो जांदियां ने, फिर हिरदे विचों अटुट भरोसा बज जांदा अकाल पुरख दे उपर। सब बेमुखताई मनमुखताई खत्म हो जांदी है, गुरमत आ जांदी है। ताई क्या साधु दा संग, नाम दा रंग, निश्चा भंग, नाम दा रंग चढ़ जांदा है, टुट विश्वास अकाल पुरख उपर बज जांदा है। ये संगत दा फल है, सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने। आनंद कर संत हर जप, छाड सियानप बहु चतुराई, गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। तां ही लाहा लिया जांदा सत्संगत विचों, अपनी सियानप बुद्धि दी लैके आवे, वाकां दीआं चतुराईआं गल्लां नहीं चलदीआं इत्थे।

पार अव जल उत्तराह पार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तप पाया सहज सेती मन बजियां वादाहियां। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो तांगा भो हरि केरा मन नि बसाया कह नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हार नाले हार नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओहो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हार नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ यह वड्याइया कह नानक सुनो संत हो। शबद तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सुभागा कर सुभागा शबद वाजे कला जित करता हरिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुखुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जान। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे

रंग परंग अनेक न जापन करते बा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मां।

मान न की जय शरण परी जय करै सो भला मनाइए। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय।

तीर्थ दरियाओ जित भावै उजली सतसंग नामण जाओ पूरो पूरो आखिए पूरा तख्त निवास पूरा थान सामना पूरा आसन रास नानक पूरा जी मिलाए क्यों घट है गुणता श्री राग महला पहला वो भैनी गल मिलाए अंक सहेलड़ी हा मिलकै करै कहानियां समरथ कंत की आह सच।

करा दिन रात तेते तेरे रूप राम की जात अजात। सच मिला सच उपजाए सब सच मह सच समाए, सच मिला सच उपजाए सच मह सच समाए, सुरत उगवै गुरबचनी भौ खाए, नानक सच्चा पातशाह पे लय मिलाए। श्री राग महला पहला भाली सारी जे उबरी होमै मुई करा, दूत लगी पर चाकरी सतगुरु का विसाह। कल्प त्यागी बाद है कल्प त्यागी बाद है सच्चा भी प्रवाह, मन रे सच मिले पहु जाए, पिन भै बिन निरपो क्या थी है। गुरमुख सब समाए राम कीता आखण आखे आखण तोट न होए, मंगण वाले जितने दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है मन बसिया सुख होए। जग सुपना बाजी बनी किरमै खेल खिलाई, विच संजोगी मिल एक से वे जोगी उठ जाए, जो भावै सो थी अवन करना जाए। कर गुरमुख बस जाइए सच वखर सतरास, जिनी सच मणंजिया गुरु पूरे साबास। नानक शब्द पछाण सी सा सौदा चपास, श्री राग महला पहला धात मिला बिन धात को, सिपती शिव समाए लाल गुलाल। गह रस चा रंग चढ़ाओ सच मिला संतोखी है, हर जा पेका पाए भाई रे संत ना कीरे नु, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ धेन रहाओ।

शब्द दर्शित लाए, जिन गुरम को नाम न बुझे मन मज में आवे जय राहु तन सुचा सुहा की है जिमे सच सुहाऊ पै सच राति दे हरी जीव सच सवाऊ सची नज निहालिये बहुन पावे ताऊ साची ते पवन भया पवन तय जल हो जल ते त्रिपुन साजया कट कट जो समोए निर्मल मैला ना थिए शब्द रते पत होए मन साच संतोखे आ साधु नदर करित समाहे नदर करित समाहे पंच पूज सत पैर ते जोत सची मन माहे नानक अवगण विसरे।

सुख लह है महल अवगुण वंती गुण को नहीं बहन मिलह दूर मन मुख शब्द न जाने मां अवगुण सो प्रभ दूर जिनी सच पछाणिया सतृति भरपूर गुर शब्दी मन विद्या प्रभ मिले आप दूर अपे रंगण रंगे ओनु सबदे लन मिलाए सचा रंग न उतराए जो सच रतेल मिलाए चारे कुंडा भव थके मन मुख बूझ न पाए जे सतगुरु मेले सो मिल रहे सच्चा शब्द समाए मित्र कनेरे कर थकी मेरा दुख हट कोई मिल प्रीतम तू कटे अंग शब्द मिलावा हुई सच खड़ना सच रस है सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ा नानू गुरम कोए श्री राग महला तीजा आपे कारण करता करे सेठ देखे आप उपाय सब एको एक वर्ता लख न लिखिया जाए आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए गुरमति साध मन मसिया सच रहिल लाए मन मेरे गुर की मन लै रजाए मन तन शीतल सब थी आए नाम सहमन आ रहा जिन कार कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणिया जापे नदन करे सेजन शब्द सोने ते सच्चा दरबार गुरमुख सच्चा है शब्द रतस्ते मिल अमिल करतार जिन कर कारण धारिया सो ईसार करे गुर कै शब्द मन मसा गुर कै शब्द पछाणिया जापे नंदन करे सेजन शब्द सोने ते सच्चा दरबार गुरमुख सच्चाए शब्द रते आ मेले करतार गुरमती सच सा लाहना जिस दा अंत न पारा बार घट घड़ आपे हुक्म वसै हुक्मे करे विचार गुर शब्दी सलाही है हुमे विचो कोई सा धन ना वै बाहरी अगुणवंती रोए सच लड़ाई सच लगा

सब कुछ तेरा वास तेरा गर्भला तेरे कर नंद बधाई तुद कर मान महता तेरा अपना अपजर सर्व कला।